0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो पियों चुन के रे वेर क्वारो
0: पियों चुन के रे वेर क्वारो
1: बिमार मैं पाचो
0: बिमार मैं पाचो
2: इवान लंग यू बिरो टेरा लोका कामु पेने
1: इटी यूनियो और रेडियो
3: डम डम नुआसे डम अफिनुआसे डॉक्टर एजी सिंह से
4: जाने पुलिस

0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम चुन के रेवर क्वारो
0: पियम चुन के रेवर क्वारो
1: बिमार मैं पाचो
0: बिमार मैं पाचो
2: यूअन लंग यू बिरोटा
1: इटी यूनियो और रेडियो
3: चुविचारा लाल तीनों चारा

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
0: मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो यूं ये करे वेर क्वारो
0: बीमार मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो
2: Pretty beat.